0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर।
6: हेलो, मैं सर
4: ये डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का।
6: एक्शन
4: लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट।
7: और कुछ चिंता मत।
8: संजय बिल्लू, नया कुरकुरे है यूपी का नंबर 1 टेस्ट।

0: तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
1: और तो चिंता मत कर।
2: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की पैसे निकलवाते हैं।
3: पागल हो गया, क्या मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है? आप कह रहे हो EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो,
4: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम?

बल्कि कई बार अन्याय को बढ़ावा देना होता है। क्षमा कीजिए, लेकिन केवल वहां जहां पश्चाताप और सुधार की इच्छा हो, जहां सम्मान समाप्त हो जाए और गलतियां आदत बन जाए, वहां अपनी सीमाएं तय करना ही आत्मसम्मान है। आपकी चुप्पी किसी की गलतियों का लाइसेंस नहीं बननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, 91.2 तो मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, हाजिर हो गई हूँ आप सभी का बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। तो स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बेहद अच्छे से आप सभी रख रहे हैं। जी दोस्तों, आज 7 अगस्त 2026 का दिन, शुक्रवार का दिन, बहुत ही प्यारा सा, क्योंकि जब शुरुआत प्यारी सी होगी तो दिन भी प्यारा होगा। तो आइए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की इस प्यारे से।

दोस्तों मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कश्मीर की कली मूवी का ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं मौसम की अपडेट।

लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस समय आप सभी महसूस कर सकते हैं। और साथ ही आंखों देखा हाल अगर आप सभी को बताएं तो दोस्तों सुबह सुबह बहुत ही एक कह सकते हैं कि बारिश का हाल जो था वो बेहाल था रात को भी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मौसम साफ बना हुआ है, मतलब कि बारिश नहीं लगी। वैसे तो आसार बारिश वाले ही हैं। खैर, ऐसे में हमें थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता की जरूरत जरूर रहती है, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, थोड़ा सा भी मौसम अगर साफ दिखाई देता है तो हम निकल पड़ते हैं घूमने के लिए, यहाँ वहाँ थोड़ा सा भटकने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे में फिर थोड़ा सा एकदम से मौसम खराब होता है तो हमारी जो है जान को नुकसान पहुँचने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी को सेफ और सावधानी की ओर लेकर चलिए। फिलहाल आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा।

तो सही ज्ञानु दशमलव ऑफ दो मेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और आज 7 अगस्त 2026 का दिन है, बहुत ही खास दिन है, खास करके हिमाचल की हम बात करें। जी दोस्तों, आज हथकरघा दिवस जो है आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी संस्कृति को बचाए रखने की एक परंपरा चली आ रही है, तो ये दिन है हमें जागरूक करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक उसे सुरक्षित पहुंचाया जा सके, उसके बारे में उन्हें नॉलेज या यूं कह सकते हैं कि वो बातें जो हैं उन्हें बताई जाएं। तो हर एक दिन मनाने का एक मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में अवेयर किया जाए, लोग उसकी खासियत को समझें, उसकी अहमियत को समझें। जो परंपराएं कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं, जो संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, उसी के लिए हर दिन को इतने उत्साह के साथ जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, इस दिन को सिर्फ सेलिब्रेशन तक सीमित तो नहीं रहने देना चाहिए, उसके जो मेन उद्देश्य है उसे भी पूरा ज़रूर करना चाहिए। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

तो 9:20 हो चुके हैं और मनोरंजन और बातचीत का सिलसिला ये इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन समय है कुछ खास जानकारियों का। तो आइए सबसे पहले चलते हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ।

0: 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस दौरान कुल 22 पुरस्कार बुनकरों को उनके योगदान के लिए प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। प्रदेश में भी हथकरघा दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों को निर्धन बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कलाकारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने, इससे संबंधित एक वीडियो बनाने और इस वीडियो को देश विदेश में साझा करने का आग्रह भी किया।
1: आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: प्रदेश सरकार ने एचपी शिवा परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एचपी शिवा परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक शिमला में आयोजित की गई। बागवानी मंत्री ने परियोजना के सभी घटकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और दूसरे चरण के कार्यों को समयबद्ध शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना के अधिकारियों द्वारा अवगत करवाया गया कि इस परियोजना के प्रथम चरण के तहत निर्धारित 3000 हेक्टेयर लक्ष्य के अंतर्गत अब तक लगभग 2600 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा चुका है, जिसमें से 1543 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का कार्य सितम्बर तक किया जाएगा। परियोजना के तहत 3000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कुल 331 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिससे लगभग 10,000 से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। 25 अगस्त से शुरू होने वाली मणिमहेश यात्रा को लेकर चंबा जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पिछले साल भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए पैदल मार्ग को इस बार सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे वैकल्पिक मार्ग का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका और शेष कनेक्टिविटी का काम भी तेजी से चल रहा है। 19 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा के लिए यात्रा मार्ग पर सुरक्षा सुविधाओं और आपदा प्रबंधन के सभी इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं यात्रा के लिए पंजीकरण भी शुरू हो चुका है और हेलीटैक्सी सहित अन्य सुविधाएं भी जुटाई जा रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
2: हिमालय की गोद में बसे पवित्र मणिमहेश कैलाश की यात्रा हर साल लाखों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र रहती है। वर्ष 2025 के मानसून में हरसर से धनशोर तक का पैदल मार्ग भारी बारिश से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी को देखते हुए इस बार प्रशासन ने क्षतिग्रस्त मार्गों को दुरुस्त कर श्रद्धालुओं के लिए अन्य सुविधाएं जुटाने का कार्य भी तेज कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि मौसम विभाग की एडवाइजरी को ध्यान में रखकर ही यात्रा की योजना बनाएं, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति में स्पीति का प्रसिद्ध राज्य स्तरीय लदरचा मेला 24 से 26 अगस्त तक काजा में आयोजित किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त शिखा ने मेले की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेले के पहले दिन पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी होगा, जिसमें प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों सहित स्थानीय कलाकार, महिला मंडल और स्कूली बच्चे भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा किसान मेले का भी आयोजन किया जाएगा, जहां किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी दी जाएगी। उपायुक्त ने सभी विभागों और स्थानीय लोगों से मेले को सफल बनाने की अपील की है। कुल्लू जिला की सभी अदालतों में राज्य लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विशाल तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को जिला की सभी अदालतों में राज्य लोक अदालत जबकि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। उन्होंने सभी संबंधित पक्षकारों से आग्रह किया कि वे अपने मामलों को लोक अदालत में रखने के लिए सहमति प्रदान करें और इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करें। श्रम कल्याण अधिकारी मंडी अनिल ठाकुर ने मंडी जोन के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से भारत सरकार के ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाकर ई श्रम कार्ड बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी और सहायता के लिए संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का दौर जारी है। वर्षा के कारण प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से कई सड़क मार्ग बाधित हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम विभाग ने आज बिलासपुर और कांगड़ा जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 12 अगस्त तक मॉनसून जारी रहने की संभावना है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला के शब्द है, पूर्व सीपीएस को सरकारी बंगले देने पर हाईकोर्ट सख्त, सीएस से जवाब तलब। दैनिक जागरण ने लिखा है, पद से हटाने पर भी पूर्व सीपीएस को विशेष लाभ कैसे दिए। हंगामेदार होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र, शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है, अब तक पूछे गए 212 सवाल, नियमों के तहत चर्चा के नोटिस भी मिले। 5 आईएएस अधिकारियों को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी, आदित्य नेगी उद्योग विभाग भी देखेंगे, दैनिक भास्कर की खबर है। दिव्य हिमाचल के अनुसार हिमाचल के लिए 400 करोड़ से अधिक की सैद्धांतिक मंजूरी, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नितिन गडकरी से दिल्ली में की मुलाकात। हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, भ्रष्टाचार से अर्जित की संपत्ति प्रदेश के गरीबों में बांटेंगे। मौसम की खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, लैंडस्लाइड के कारण 16 घंटे तक बंद रहा शिमला की नौ नेशनल हाईवे 5। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से उत्साह से मनाने का किया आग्रह। प्रदेश ने एचपी शिवा परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के दिए सख्त निर्देश। 25 अगस्त से शुरू होने वाली मणिमहेश यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का दौर जारी, आज बिलासपुर और कांगड़ा जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, आज 7 अगस्त 2026 का दिन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के उन कुशल बुनकरों की, जिनके हाथों की कला हमारी संस्कृति और विरासत को जीवंत बनाए हुए हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का उद्देश्य देश के लाखों हथकरघा बुनकरों के योगदान का सम्मान करना और लोगों को हस्तनिर्मित वस्त्रों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा केवल वस्त्र नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, मेहनत और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। जी दोस्तों, तो ये खूबसूरत सी, बहुत ही एक कहते हैं ना, हमारी संस्कृति धरोहर को बचाए रखने के लिए बहुत ही खास बातें हैं, तो इन्हें ध्यान देना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

0: शिमारुकेन।
1: दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला।

प्यारे से सुनहरे से अवसर पे आप सभी को बता दूं कि आज के दिन यानी कि 7 अगस्त 2026 के दिन जहां आप सेलिब्रेट कर रहे हैं हथकरघा दिवस, तो दोस्तों इस सुनहरे अवसर पे आप सभी जुड़ेंगे हमारे एक खास मेहमान के साथ। जी दोस्तों, ये खास बातचीत आप सभी के साथ साझा करने के लिए जुड़ेंगे डॉक्टर अंजलि सूद जी। तो सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप इस स्पेशल बातचीत के साथ जुड़ेंगे, खास बातचीत के साथ जुड़ने वाले हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल और ऊनी वस्त्र देश विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। इन उत्पादों में स्थानीय संस्कृति, प्रकृति के रंग और पारंपरिक डिजाइनों की सुंदर झलक दिखाई देती है। हिमाचल के अनेक परिवार आज भी हथकरघा उद्योग से जुड़े हैं। ये केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, आधार है। सरकार और विभिन्न संस्थाएं बुनकर को प्रशिक्षण, आधुनिक डिजाइन, विपणन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, जिससे हमारी इस संस्कृति को बचाया जा सके, इसे विलुप्त ना होने दिया जाए। जी दोस्तों, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और

दोस्तों सरहद मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और कहते हैं कि खो जाओ जिंदगी में अचानक से, जो ढूंढने आए बस उसी को मिलना, हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना कभी कभी अपनी कीमत कम कर देता है। जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं वो आपकी खामोशी भी महसूस कर लेते हैं, और जिन्हें आपकी कद्र नहीं उन्हें आपके होने या ना होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जीवन में ऐसे लोगों को पहचानना ज़रूरी है जो केवल ज़रूरत पड़ने पर नहीं बल्कि आपके बिना भी आपको याद करते हैं। याद रखिए दोस्तों, रिश्तों की सच्चाई शब्दों से नहीं बल्कि तलाश से पता चलती है। जो आपको खोने से डरता है वही आपको पाने की कोशिश भी करता है। इसलिए कभी कभी खुद को भी समय दीजिए, भीड़ से दूर होकर देखिए कौन आपको ढूंढता है और कौन आपकी कमी महसूस करता है और कौन सिर्फ आदत से आपके साथ है। क्योंकि सच्चे रिश्ते मौजूदगी से नहीं अहमियत से पहचाने जाते हैं। आपकी असली कीमत वही जानता है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको ही ढूंढता है। जी दोस्तों, और आज का दिन भी बहुत खास है, तो इस खास दिन को किस तरह से खास और बेहतर बनाया जा सकता है ये आप सभी के हाथों में है। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम को खास और बेहतर बना सकते हैं कुछ प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ। तो आइए इस प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।

दोस्तों इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.9 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और बहुत ही खास एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं दोस्तों कि आज 10 बजे जो है आप सभी हमारे खास मेहमान डॉक्टर अंजलि सूद जी के साथ जुड़ेंगे, उनकी खास बातचीत आज के इस खास सुनहरे से अवसर पे, हथकरघा दिवस के अवसर पे। दोस्तों जहां आज के समय में जब मशीन से बने उत्पादों की भरमार है, तब हाथ से बने उत्पाद अपनी गुणवत्ता, टिकाऊपन और विशिष्टता के कारण अलग पहचान रखते हैं। यदि हम स्थानीय हथकरघा उत्पाद खरीदते हैं तो हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि एक कारीगर के सपनों और उसके परिवार की आजीविका को भी सहयोग देते हैं। आज के दिन हम सभी ये संकल्प लें कि त्योहारों, पारिवारिक समारोहों और विशेष अवसरों पर अधिक से अधिक हैंडलूम उत्पादों को अपनाएंगे, जिससे कि हमारी सांस्कृतिक विरासत भी सुरक्षित रहेगी और स्थानीय कारीगरों का उत्साह भी बढ़ेगा। जी दोस्तों, हर किसी की अपनी एक उम्मीदें, अपनी एक सपने होते हैं। तो जहां पहले के समय में इतनी अहमियत उन चीज़ों को दी जाती थी, तो जिस तरह से मशीनी युग की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ के लिए हम मशीनों पर डिपेंड होते जा रहे हैं, तो अगर बुनाई की बात करें तो बुनाई के लिए भी आजकल मशीनें आ गई हैं। लेकिन जो हाथों से बनाई गई स्वेटर्स हो या शॉल हो, उसकी एक अलग अहमियत होती है। तभी तो दूर दूर से, देश विदेश से लोग जब यहाँ हिमाचल में घूमने के लिए आते हैं, तो हिमाचली चीज़ों के लिए ये जो सांस्कृतिक विरासत है हमारी, उससे इतना आकर्षित होते हैं और वो यादगार के तौर पे उन्हें यहाँ से लेकर भी जाते हैं। तो यहीं से सहयोग मिलता है उन बुनकरों को, उनके उत्साह

को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, अपनी उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए। तो हमारा भी ये दायित्व जो है वो बनता है कि हम भी अपनी इन विरासतों को किस तरह से सहेज कर रख सकते हैं, परंपराओं को आगे तक लेकर जा सकते हैं एक अट्रैक्टिव मोड में, आज के युग के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उसमें बदलाव ज़रूर कीजिए, लेकिन हाँ, उन संस्कृति को बचाए रखने में अपना सहयोग जरूर दीजिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आके और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आप सभी इस प्यारे से कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और अब आप सभी सुनने वाले हैं खास बातचीत रेडियो दोस्त रुचिका, और साथ ही हमारे खास मेहमान जो हैं वो डॉक्टर अंजलि सूद जी जुड़े हैं इस खास बातचीत में। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। एक बार फिर से आप सभी को हथकरघा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 ओमेगा हर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका। हाजिर हो गई हूं एक बार फिर से एक और खास बातचीत के साथ, क्योंकि आज का दिन ही बहुत खास है। आज का दिन आप सभी मना रहे हैं विश्व हथकरघा दिवस। जी दोस्तों, क्यों मनाया जाता है, क्या खासियत है और क्यों आज ही के दिन मनाया जाता है, क्या इसकी अहमियत है हमारी जिंदगी में, तो आज के इस बातचीत में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जी दोस्तों, तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर अंजलि सूद जी का।
1: धन्यवाद रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं मैम आप?
1: बहुत बढ़िया
0: जी। मैम आज बहुत ही एक खास बातचीत के लिए आज आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय लेकर आए हैं जी। तो आज जो है एक तरह से हम हथकरघा दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले ये हथकरघा होता क्या है?
1: हथकरघा जो है बहुत ऐसे टर्म है कि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। हैंडलूम कहते हैं इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें
0: जी।
1: तो जो कपड़ा होता है उसको बनाने के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं। तो कुछ जो है वो लूम पे बनती हैं जिसमें वीविंग के थ्रू बनाई जाती है, कुछ हम जैसे निटिंग के थ्रू जैसे स्वेटर्स बनते हैं वैसे बनाए जाते हैं, कुछ कपड़े क्रोशिया या लेस मेकिंग इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी तकनीकें हैं किसी भी कपड़े को बनाने के लिए। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा कपड़ा जो प्रयोग होता है डे टू डे लाइफ के अंदर, वो जो है वो लूम पे बना हुआ कपड़ा जो है वो होता है। पुराने समय से अगर हम देखते आए तो भारत में जो बुनाई परंपरा थी कपड़े की वो खड्डी पर की जाती थी, या हथकरघा जिसको कहते हैं, हाथ से चलने वाला करघा। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, बिजली का जो है आविष्कार हुआ और उससे चलने वाले यंत्र भी बनने लगे। तो जो खड्डी थी उसमें भी कुछ परिवर्तन आए और वो भी बिजली से चलने वाली बन गई। तो उसको कहते हैं पावर लूम, जो बिजली से चलती है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई और ऑटोमेटिक लूम्स आ गई, कंप्यूटर से जुड़ी हुई लूम्स आ गई। तो इन सारी लूम्स के अंदर कपड़ा बनने की स्पीड जो थी वो बहुत फास्ट हो गई। जो हथकरघा है वो एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि वो पूरा का पूरा हाथ से चलने वाली मशीन है और उसको जब उस पर धागा चढ़ाना, मतलब काफ़ी प्रोसेसेस उस वीविंग से पहले भी होती हैं, धागे को तैयार करना, धागे को खड्डी के लिए तैयार करना, फिर उसको खड्डी पे चढ़ाना, फिर जो उसमें ताना बाना कहते हैं कि ताना इस जो लंबा धागा लगता है और बाना होता है जो कि क्रॉस वाइज या विड्थ वाइज डायरेक्शन से कपड़ा बनाने के लिए डाला जाता है। तो ये सारी प्रोसेसेस हाथ से की जाती हैं किसी भी हथकरघा के अंदर या खड्डी के अंदर, हाथ से जो चलती है खड्डी। तो हथकरघा दिवस क्यों मनाते हैं आपने पूछा, तो कपड़ा बन रहा है तो एक आम आदमी यही सोचेगा ना कि खड्डी पर हाथ से चलने वाली पर बने या बिजली से चलने वाली पर बने तो क्या फर्क है। पर जो हाथ से चलने वाली जो करघा है या खड्डी है वो एक हमारा पारंपरिक उद्योग है। जो हिमाचल के या पूरे देश के ही लोग जो हैं इस व्यवसाय से पुराने समय से जुड़े हुए हैं। बहुत समय नहीं हुआ, करीब 200 वर्ष हुए होंगे जब से ये पावर लूम का जो चलन है वो आया है। उससे पहले सारा का सारा कपड़ा पूरे विश्व में हाथ से ही बनाया जाता था। तो जैसे जैसे पावर लूम का चलन बढ़ा तो जो हाथ से कपड़ा बनाने का उद्योग था उसकी इम्पोर्टेंस कम होने लगी, क्योंकि लोगों को जल्दी कपड़ा मिलने लगा और उसकी कीमत भी, नेचुरली कोई चीज़ हाथ से बनती है तो उसको बनने में समय ज़्यादा लगता है, तो उतनी ही कीमत भी बढ़ जाती है क्योंकि उतनी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी। और तो वो महंगा भी था और लोगों को कंपैरेटिवली सस्ता कपड़ा जो है वो पावर लूम का मिलने लगा। तो लोगों ने बहुत हद तक जो हैंडलूम से बना हुआ कपड़ा था उसका प्रयोग करना या तो बंद कर दिया या बहुत ही कम कर दिया, किसी किसी खास मौके पर ही उसका प्रयोग जो है वो किया जाता था। तो उससे जो हथकरघा से जुड़े हुए लोग थे पूरे भारत के, उन पे बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा। उनके जो रोजी रोटी थी, उनका जो दैनिक खर्चा चलना भी मुश्किल हो गया, उनके घरों में मुश्किल आ गई, क्योंकि खरीदार नहीं बचे
0: जी।
1: तो इसलिए ये जो हथकरघा दिवस है ये मनाया जाता है ताकि हम पूरे देश को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकें और इसके कपड़े कैसे भिन्न होते हैं जो पावरलूम पे बने हुए कपड़े होते हैं और क्या खासियत है इन कपड़ों की। देखिए ऐसे ना कि जो पावरलूम है या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग है या और एडवांस्ड मशीन्स जो आ गई उसमें कपड़ा स्पीड पे तो बन रहा था पर उसमें वो पर्सनल टच नहीं था
0: जी,
1: है ना,
0: प्यार नहीं था।
1: हाँ, और जो पारंपरिक भारत में जो भी कपड़ा बनता था वो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ऊन से बन रहा है, चाहे वो कॉटन से बन रहा है, चाहे वो सिल्क से बन रहा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके ही ट्रेडिशनली बनाया जाता है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स तो बहुत मतलब बाद में आए, तो नेचुरल फाइबर्स का यूज़

0: चीज़ जो है वो परेशान करने लगी, एनवायरनमेंट के लिए ख़राब थी। और साथ में क्या हुआ, फास्ट फैशन का दौर आ गया। तो फास्ट फैशन में क्या था कि दो हम सिंथेटिक कपड़ों वाले चीज़ें खरीद रहे थे और ज़्यादा अमाउंट में खरीद रहे थे। फिर एक फास्ट फैशन के दौर में क्या हुआ कि हम बहुत ही जल्दी जल्दी सामान खरीदने लग गए। तो हम कुछ टाइम उसको यूज़ करते, कभी एक महीना, कई बार तो एक भी बार नहीं पहना या एक दो बार पहना और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो ये सिंथेटिक चीज़ें जो हैं इनको ख़त्म होने के लिए, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, अपने आप से नहीं ख़त्म हो रही है, तो ये भी एक समस्या थी। तो जो हमारी भारत सरकार है उसने सोचा कि जो हथकरघा जो बनाता है उसके व्यवसाय को भी फ़र्क पड़ रहा है, हमारे पर्यावरण को भी फ़र्क पड़ रहा है, और साथ में जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे कई सदियों से पुराने पुराने तरह के कपड़े बनते आए हैं वो भी बंद हो रहे हैं
1: जी
0: बनने, क्योंकि अब आगे उसमें अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो क्योंकि ये पारिवारिक व्यवसाय हैं, पिता जो है वो अपने पुत्र को
1: पुत्र को
0: सिखाता है और वो आगे जो पूरा जो टेक्निकल नो हाउ है वो अब आगे पास ऑन करता है। तो जब खरीदा नहीं है तो नेचुरली और खड्डियों का चलना बंद हो गया और वो कला जो है विलुप्त होने के
1: बिल्कुल
0: कगार पर आ गई। तो सरकार ने उसमें एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हम एक राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सेलिब्रेट करें। तो 2015 से सरकार ने ये प्रयास शुरू किए और 2015 में ये पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो मनाया गया और इसके लिए दिन चुना गया 7 अगस्त का। तो 7 अगस्त चुनने के लिए भी एक बहुत ही विशिष्ट कारण रहा, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन जो है वो आज़ादी की लड़ाई में शुरू हुआ था। तो उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने ये प्रण लिया था कि हम अपने देश में ही बने सामान का उपयोग करेंगे और विदेशी सामान की होली जलाई थी उन्होंने।
1: जी
0: तो वो दिन को याद करते हुए, क्योंकि हथकरघा हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है, तो उसके साथ एसोसिएट करते हुए, स्वदेशी के साथ एसोसिएट करते हुए 7 अगस्त का दिन जो है इस दिन को मनाने के लिए चुना गया।
1: जी तो दोस्तों आप सभी ने जाना कि आखिर हथकरघा दिवस 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, और ये हथकरघा मतलब कि किस तरह से काम करते हैं इस पे और किस तरह से इसकी अहमियत है, तो मैम ने बहुत अच्छे से बताया। तो फिलहाल मैम एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे
0: जी
1: और उसके बाद हम फिर से वापस आएंगे अपनी इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: दोस्तों इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए दोस्तों, बहुत ही खास आज का दिन आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी बहुत ही सुनहरे से अवसर पे हम बातचीत भी कर रहे हैं। हथकरघा दिवस आप सभी मना रहे हैं, तो हथकरघा दिवस मनाने के पीछे का मोटिव क्या है, क्यों मनाया जाता है, तो वही हम जान रहे हैं। तो मैम, जैसे कि अभी हमने बात की कि हथकरघा दिवस, आपने बताया कि किस तरह से ये जो है क्यों 7 अगस्त को ही चुना
1: जी,
0: गया
1: जी।
0: लेकिन अब अगर हम एक नज़र दौड़ाएं, क्योंकि हर दिन का एक अपना इतिहास होता है, हम दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो दिन सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन तक ही सीमित रह जाते हैं। जो हम जागरूकता की बात करते हैं, जो उसके पीछे का उद्देश्य होता है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो हथकरघा दिवस का क्या उद्देश्य है, मेन फोकस किन चीज़ों पे रहता है, और जो ये काम करते हैं उन्हें इस दिन से क्या लाभ मिलता है?
1: ये दिन मनाने से अगर हम कहें तो ऐसा तो कोई लाभ नहीं है, पर एक ये दिन है जागरूकता बढ़ाने का और एनकरेज करने का उन लोगों को जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या किसी परोक्ष या इन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से इस चीज से जुड़े हुए हैं। तो ये एक दिन प्रिजर्व करना है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या हमें कदम बढ़ाने हैं उसकी तरफ कार्य करने का दिन है। नई नई पॉलिसीज भी इस दिन के ऊपर लॉन्च की जाती हैं। जो हमारे बुनकर भाई हैं, जो आर्टिज़न हैं, जो हथकरघा पे काम करते हैं या और कोई अलाइड एक्टिविटीज़ उसकी कर रहे हैं, जैसे धागा बनाना है आपको, कॉटन उगाने से लेकर, जैसे कॉटन की अगर हम बात करें तो उगाना है, उगेगी तभी तो आगे कुछ होगा, है ना। सिल्क है तो सिल्क वर्म को रियर किया जाएगा, उसको पालेंगे, सिल्क के कीड़े को, रेशम के कीड़े को, तभी आगे धागा मिलेगा। भेड़ पालन करेंगे तभी आगे धागा मिलेगा। तो उन लोगों को भी साथ लेकर, और फिर धागा में बन गया, धागे से फिर बुनाई होनी है। अलग अलग हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे कोई, जैसे हिमाचल है वो ऊनी वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो कई जगह जो है वो सूत की खेती की जाती है, कपास उगाई जाती है, कई जगह सिल्क की भी खेती की जाती है, मतलब कि सिल्क की खेती से ऐसे सिल्क नहीं मिलती, सिल्क के कीड़े जो है रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और वो अपने आसपास एक कुकून सा बना लेते हैं, उस कुकून में से धागा जो है वो प्राप्त होता है। तो उस स्टेज से लेकर जो भी लोग जुड़े हुए हैं एंड प्रोडक्ट के बनने तक और उसकी मार्केटिंग तक, तो उनके लिए स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं इस दिन पे, उनको एनकरेज करने के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में बिल्कुल उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं लोग उनको सम्मानित किया जाता है। इस दिन पे जगह जगह एग्जिबिशंस, फेयर्स, मेले सब लगाए जाते हैं ताकि जो आम जन है उनको भी इन उत्पादों की उपलब्धता हो पाए और वो खरीद पाए। तो कई बार ऐसे होता है ना कि हम किसी जगह पे रहते हैं, वहाँ इस तरह का कोई सामान नहीं मिल रहा, हम खरीदना भी चाहते हैं पर नहीं मिलता। जैसे हम हिमाचल में हैं तो अगर हम कोई सिल्क का या रेशम का या सूती कोई उत्पाद अच्छा खरीदना चाहते हैं, हैंडलूम का, तो यहाँ नहीं मिलता है। तो अगर कोई एग्जिबिशन यहाँ आती है, कोई मेला लगता है, कोई आर्टिजन्स को यहाँ बुलाया जाता है, अपना सेटअप लेकर वो आते हैं और अपनी शॉप लगाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो स्थानीय लोगों को वो सामान खरीदने का एक सुनहरा मौका मिलता है। तो इस तरह के प्रयास रहते हैं, प्लस एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जितना भी हमारा जो हाथ से बने उत्पाद हैं उनके एक्सपोर्ट के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। विदेशों में भी एग्जिबिशंस और फेयर्स लगाए जाते हैं और ट्रेड डील्स की जाती हैं सरकार द्वारा, ताकि इस क्षेत्र में जो बुनकर लोग हैं उनको आगे फायदा मिले और बढ़ावा भी मिले और साथ में भारत की संस्कृति भी आगे जाए।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, तो जैसे कि मैम, हर दिन हम जब भी हर साल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, कुछ खास डेज होते हैं, तो उसके पीछे एक थीम जो है वो डिसाइड की जाती
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: उसी थीम पे जो है उस मतलब कि सेलिब्रेशन को फोकस्ड किया जाता है। तो इस बार जो है हथकरघा दिवस की ऐसी कौन सी थीम जो है वो रखी गई है जिस पे फोकस्ड किया गया है?
1: तो हथकरघा दिवस एक तो वोकल फॉर लोकल, ये तो इसका मेन थीम है ही है कि हमें जो है अपना लोकल प्रोडक्ट जो है उसके बारे में बात करनी है, चर्चा करनी है और उसकी जानकारी सब तक पहुंचानी है। पर हर साल स्पेसिफिक थीम्स भी रखे जाते हैं, तो उसमें इस बार जो थीम रखा गया है वो है इनोवेशन का, कि जो पुराने तरीके से उत्पाद बन रहे हैं उसमें कैसे हम नयापन लाके आज के ज़माने की सोच, जो आज के ज़माने के कस्टमर को चाहिए वो चीज़ें हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, ताकि जो सेल है वो प्रोडक्ट्स की वो बढ़ पाए और लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादा हो पाए इन प्रोडक्ट्स के लिए, एक वो है। प्लस इनोवेशन जो है वो सिर्फ जो सामान बन रहा है उसके अंदर नहीं, मतलब उसके डिज़ाइन और उसकी इनोवेशन नहीं, जो मशीनरी भी यूज़ हो रही है, जो और चीज़ें यूज़ हो रही हैं, धागा बनाने की तकनीक है, चाहे धागा चढ़ाने की तकनीक है, चाहे जो खड्डी है उसको भी कैसे हम इम्प्रूव करके जो लाइफ है वीवर की वो थोड़ी सी बेटर कर सकते हैं, तो उसमें इनोवेशंस होनी चाहिए। लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से जो भी चल रहा है तो हमारे उत्पाद उनको मैच करने चाहिए। अगर हम आज भी 100 साल पुराने डिज़ाइंस को ही लेकर उत्पाद बनाते रहेंगे तो उसकी खरीदार जो है वो कम है, कम टेकर्स होते हैं, क्योंकि आज सब लेटेस्ट स्टाइल में, मॉडर्न स्टाइल में जो फैशन ट्रेंडिंग होता है उसके हिसाब से ड्रेसअप होना चाहते हैं, या अपने आसपास भी जो सामान रखते हैं हम क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो अगर हम जो भी उत्पाद खड्डी पे बन रहा है, हथकरघा के ऊपर बन रहा है, तो उसको लेटेस्ट डिज़ाइंस, लेटेस्ट कलर कॉम्बिनेशंस और नए उत्पाद, जैसे कि हिमाचल में शॉल्स बनते हैं, मफलर्स बनते हैं, पट्टू बन रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या चलन चला कि शॉल्स का यूज़ कम हो गया, तो लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया, स्टोल्स बनने लगे। उसकी जो मार्केटिंग थी वो इजी थी क्योंकि बहुत लोग जो हैं अब वेस्टर्न आउटफिट के साथ मैचिंग कुछ पहनना चाहते थे या फिर बहुत भारी कुछ नहीं पहनना चाहते थे, तो धागे में परिवर्तन आया। पहले जो मोटा धागा बनता था उसको कैसे और फाइन पतला करके ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, उसका टेक्स्चर जो पहले पुराने प्रोडक्ट्स का होता था वो थोड़ा रफ रहता था, हिमाचल की बात करें ऊन की
0: जी,
1: तो उसको उन्होंने बदला है, उसको सॉफ्ट टेक्सचर उसकी ऐसे धागे की फिनिशिंग ऐसे करी और लूम को ऐसे सेट किया जो पतले धागे को चलाने के लिए सही रहे, तो वो चीज़ें उसके अंदर आई। फिर उसके बाद जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने कहा कि शॉल से स्टोल पे फोकस ज़्यादा हुआ, शॉल क्योंकि कम लोग प्रेफर कर रहे थे, उसके अलावा जैसे जैकेट्स हैं, कोट्स हैं, अभी कोई श्रग है, कोई पॉन्चू है, टोपी के अलग अलग स्टाइल्स हैं, मॉडर्न स्टाइल के पैंट्स हैं, शर्ट्स भी आ गई, फिर जैकेट्स आ गई, स्कर्ट्स भी पहनने लगे, तो डिज़ाइंस को इस तरीके से बनाया कि उस कपड़े को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके। जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे वो तो बन ही रहे हैं, ठीक है, पर जो समय की मांग के हिसाब से जैसे जैसे परिवर्तन आ रहे हैं, लोगों का टेस्ट बदल रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बदल रही हैं, तो उसके हिसाब से भी इनोवेशन होना ज़रूरी है। जो बुनकर है उसको ये पता होना चाहिए कि ख़रीदार क्या चाहता है, तो उस चीज़ को इनोवेशन इन वीविंग, बुनाई में कैसे हम नई चीज़ों को ला सकते हैं ताकि जो सामान कोई भी बना रहा है वो ग्राहक तक पहुंचे और उसका सही मूल्य जो है वो बुनकर को मिले। अगर हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो क्वालिटी में थोड़ा कम है तो उसका मूल्य नहीं मिलेगा, मेहनत तो की है ना बुनकर ने, तो क्वालिटी को भी कैसे इम्प्रूव करना है हमने, नए डिज़ाइंस को कैसे लाना है, और जो भी मशीनरी यूज़ हो रही है चाहे वो हाथ से ही चल रहा है सारा, पर उसकी भी तकनीक को इम्प्रूव करना जो है वो जिम्मेदारी है, उसमें इनोवेशन। फिर इनोवेशन ये सामान बन गया है उसको आगे कस्टमर तक पहुँचाना है, खरीदार ग्राहक कैसे मिलेगा ना, ठीक है, तो अभी उसमें भी बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं। पहले तो क्या होता था कि आप एक दुकान खोलते थे और जो उस दुकान तक पहुँचता था वही आपका सामान खरीद पाता था, तो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, तो पूरी दुनिया एक बाजार है। आप घर बैठे इस दुनिया के किसी भी रिमोट बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र से भी अपना सामान जो है किसी भी दुनिया कोने के कोने में पहुंचा सकते हैं अगर आपको सही तकनीक की जानकारी है। तो वो जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें भी इनोवेशन की ज़रूरत है, और सही जानकारी के अगर साथ अगर हम अपने जितना भी उत्पाद बनता है उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेकर आते हैं तो बाजार की संभावनाएँ भी बहुत बढ़ जाती हैं।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी ने जाना, और वाकई में ये बात बहुत ही कहने सुनने में नहीं, रियलिटी में देखने लायक है कि जिस तरह से समय बदल रहा है उस तरह से हमें खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हम उसी पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें, जैसे अब आज के युवाओं की बात करें तो उनकी च्वाइसेस थोड़ी अलग हैं, हटकर हैं, मानते हैं जुड़े हैं वो संस्कृति के साथ, उस धरोहर के साथ, लेकिन उन्हें थोड़ा सा ट्रेंडिंग वे में उस चीज़ को पहनना या वेयर करना बहुत पसंद आता है। तो अगर हम उन जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जो धरोहर है हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के अकॉर्डिंग, तो उसे हम थोड़ा सा इनोवेटिव बना दें, थोड़ा सा क्रिएटिव बना दें, तो उसे बहुत अच्छे से जो है लोग खरीदेंगे भी, और उससे आपको भी मुनाफा होगा और उससे हमारी संस्कृति को भी बचाया जा सकता है। जी, तो आइए दोस्तों इस बातचीत, अपनी बातचीत को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और लेकर चलते हैं आप सभी को एक प्यारे से गीत की, और उसके बाद फिर से वापस जुड़ते हैं आप सभी के साथ।

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं और बहुत ही खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रुचिका और डॉक्टर अंजलि मैम के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज बहुत खास दिन, हथकरघा दिवस जो है आप सभी मना रहे हैं और उसी से जुड़ी बातचीत भी आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हथकरघा की, किस तरह से लोग इसमें जो है मतलब कि मॉडर्न जमाने के साथ अपने आप को ढाल सकते हैं या किस तरह से उसे ट्रेंडिंग में ला सकते हैं। अब हम अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण और वोकल फॉर लोकल में जो है हथकरघा की अभियान की क्या भूमिका रही, किस तरह से इसमें इसका रोल रहा?
1: तो हथकरघा जो है पूरी तरह से वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करता है
0: जी,
1: क्योंकि ये हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं और वोकल फॉर लोकल या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके अंदर भी बहुत सारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो हैं, हथकरघा के उत्पाद जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और जब हम लोकल की बात करते हैं, कोई पर्यटक अगर मान लो हिमाचल आता है, कुल्लू जाता है, कांगड़ा आता है, धर्मशाला आ रहा है या किन्नौर साइड जा रहा है, शिमला जा रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का कुछ ना कुछ खरीद के लेकर जाएं, तो वहाँ की पहचान होती है। क्योंकि तो अगर हम थोड़ा अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टीज़ करेंगे, उनके बारे में जानकारी जो लोग आ रहे हैं उनको देंगे, या जो हमारे लोकल लोग भी हैं जो कि अब इन प्रोडक्ट्स को भुला चुके हैं या ऐसे सोचते हैं कि इनकी केयर कौन करेगा या महंगे हैं, तो वो थोड़ा सा अवेयरनेस जनरेशन की ज़रूरत है। और इस ओर बहुत प्रयास हो भी रहे हैं अभी अगर हम देखें तो। वोकल फॉर लोकल जो है, हमें अपने उत्पादों की जो पहचान है वो लोगों को बतानी है और प्रमोट करना चाहिए अपने जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको, हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम अपने जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको अगर बताएंगे, उनके बारे में जानकारी लोगों को देंगे, तो नेचुरली लोग जो हैं उसके प्रति आकर्षित भी होंगे और उनको खरीद देंगे भी
0: जी।
1: तो एक तो चीज़ है। उसके लिए सरकार, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं या प्रधानमंत्री कभी भी बाहर जाते हैं तो अलग अलग तरह के गिफ्ट्स लेकर जाते हैं बाहरी देशों में वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों के लिए। तो बहुत सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स या हैंडलूम प्रोडक्ट्स या हैंडीक्राफ्ट्स, यही गिफ्ट दिए जाते हैं। तो ताकि जो बाहर भी विदेशों में भी लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी हमारी धरोहर संस्कृति के बारे में पता चले। और अगर उनको पता चलेगा तो मतलब उसकी जब न्यूज़ आती है तो पूरी दुनिया पढ़ती है, उनको भी जानकारी मिलती है कि कौन सा उत्पाद किस तरीके से बना है, कितनी कितनी इसमें मेहनत लगी है, क्या इसके जो बनाने में क्या क्या चीज़ें उपयोग हुई हैं और इनकी क्या खासियत है, कैसे ये अलग हैं ऐसी चीज़ों से जो बहुतायत में फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। तो हैंड

0: नायाब होता है। कोई भी अगर हम एक बारी में चार शॉल्स भी बना रहे हैं मान लो, तो चारों शॉल्स में हम नया डिज़ाइन देकर बना सकते हैं, चारों को अलग डिज़ाइन में बना सकते हैं। जबकि किसी पावर लूम पे अगर कोई चीज़ बनती है तो उसमें आप डिज़ाइन नहीं चेंज कर सकते हैं, वो इतना आसान नहीं होता जी। तो आपको हर चीज़, आपको कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, डिज़ाइन की प्लेसमेंट चेंज करनी है, मोटिव चेंज करना है, तो हथकरघा में आप आराम से आसानी से हर पीस में जो है वो वेरिएशन ला सकते हैं और यूनिक प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो आप अपनी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं और साथ में आपने कहा कि सस्टेनेबल पर्यावरण के लिए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक जो धागे यूज़ किए जाते हैं जैसे ऊन है, कपास है, मतलब सूती धागा है या रेशम का धागा है, तो वो हमें कहाँ से मिले हैं, हमारी धरती से या हमारे आसपास मिले हैं और हमने किसी फैक्ट्री में उनको नहीं बनाया है। तो उन्हीं चीज़ों का जब हम प्रयोग करते हैं, और बहुत सारी जगह प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग होता है रंगाई के लिए, तो कोई सिंथेटिक डाइज भी यूज़ नहीं होते, तो इनकी जो लाइफ है वो अच्छी होती है। और उपयोग के बाद जब वो ख़राब हो जाता है तो वो पुनः जो है उसको इको फ्रेंडली होता है, वहीं जो है वो ख़त्म भी हो जाता है कुछ समय में, गल के खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, इन चीज़ों के उत्पाद होते हैं, कई हज़ार वर्षों तक शायद ये ख़त्म नहीं होंगे, हमारी धरती पे बोझ बन के ही रहेंगे। तो ये सस्टेनेबल हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत कम्फर्ट देते हैं, और स्किन में कोई एलर्जीज या इस तरह की चीज़ें भी प्राकृतिक चीज़ों से बने हुए उत्पाद रहते हैं तो उसमें भी नहीं होता है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और लोकल जो हमारी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ जहाँ, जैसे हिमाचल में भेड़ पालन का प्रचलन है तो वही भेड़ से ऊन मिलती है, उसी ऊन से उत्पाद बनते हैं, तो वो पूरी लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला ये एक ऐसा
1: जी। दोस्तों तो बिल्कुल आप सभी ने जाना कि किस तरह से ये पर्यावरण को भी संरक्षित करते हैं और किस तरह से हम जो है इससे मतलब कि अपना सकते हैं, किस तरह से हम इसे देश विदेश तक जो है अपनी संस्कृति के माध्यम से जो है पहुंचा सकते हैं, इस धरोहर को हर कोने कोने तक सजा सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों और भी हम बात करेंगे इस पर, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ। और आज का ये बहुत ही खास दिन है तो बहुत ही खास बातचीत भी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है हमारे लिए, लेकिन हम बात करें युवाओं की
1: जी,
0: क्योंकि चाहे हम जितना भी कहीं भी घूम लें, लेकिन जो आने वाले समय है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के हाथ में जाने वाला है देश का भविष्य, तो उन्हें हम इस अपनी संस्कृति के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, या यूं बात करें कि ये हैंडलूम है तो कैसे उनका इंटरेस्ट इसमें बन सकता है, कैसे वो अपना योगदान
1: इस बार का थीम जब रखा गया रुचिका इनोवेशन इन वीविंग, तो उसके साथ ही सरकार ने ना एक हैंडलूम हैकेथॉन शुरू करी। तो हैकेथॉन में कौन पार्टिसिपेट करता है? यंग पीपल जो अभी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, ये तो वो कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, वो हैंडलूम के लिए क्या कर सकते हैं, कोई नई वीव को बनाना, जो बनाना कपड़ा बुनने का तरीका उसमें कोई नयापन लाना, या फिर जो बन गया है कपड़ा उससे नए सामान को बनाना
0: जी।
1: या फिर उसका उसको जो है ग्राहकों तक पहुंचाना। तो हैंडलूम हैकेथॉन के अंदर युवाओं से पार्टिसिपेशन मांगी गई और बहुत बढ़ चढ़ के जो है युवाओं ने इसमें हिस्सा भी लिया और अलग अलग तरह के इनपुट्स जो हैं वो दिए इसमें। तो एक तो वो चीज़ है, और साथ में इस क्षेत्र में पढ़ाई की भी संभावनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन। निफ्ट आप जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और इस तरह के फील्ड्स में जो है वो इसकी जानकारी जो है बच्चों को दी जाती है, इस विषय में पढ़ाया जाता है कैसे खड्डी काम करती है, कैसे उस पर नए डिज़ाइंस बन सकते हैं, क्या क्या नए तरह के उत्पाद बन सकते हैं, क्या क्या नई डिज़ाइनिंग ऑप्शंस रहती हैं, वो चीज़ें हैं। प्लस जो हमारा कम्युनिटी साइंस प्रोग्राम है उसके अंदर भी लूम के बारे में बताया जाता है, हैंडलूम के बारे में वो भी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली मतलब बीटेक के कोर्सेज भी चलाए जाते हैं जो वीविंग में जो है वो एक्सपर्टीज देते हैं यंग बच्चों को, और ख़ास करके लिए उसमें प्रावधान रहता है कि जो बुनकर कम्युनिटी है, जो बुनकर लोग हैं, जिन घरों में ऑलरेडी खड्डी का काम होता है, तो उन्हीं घरों के बच्चों को उसमें जो है फ्री या सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि वो इस क्राफ्ट को सीखें और आगे जो है बढ़ाएं। तो क्योंकि बच्चों के पास नए नए आइडियाज़ रहते हैं, वो नए ज़माने के हैं, उनको पता है कि उनकी एज के लोगों को क्या चाहिए, तो उस तरह की इनोवेशन वो लोग जो हैं यंगर जनरेशन बहुत अच्छे से ला सकते हैं इस तरह के उद्योग में।
0: बिल्कुल, और अभी हम सुन भी रहे हैं कि जो अभी मतलब प्रशासन की तरफ से भी बच्चों के सिलेबस में भी जो हमारी पारंपरिक संस्कृति
1: जी,
0: है
1: जी,
0: उसे इन्वॉल्व किया जा रहा
1: जी,
0: है।
1: जी जी, धीरे धीरे सरकार प्रयास कर रही है कि जो यंगर जनरेशन है स्कूल टाइम से ही उनको भारत की संस्कृति से जोड़ा जाए, और उसमें जो अलग अलग हमारे जो परंपराएं हैं, चाहे बुनाई की हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट बनाने की हैं अलग अलग चीज़ों से, तो उसके बारे में भी इंट्रोड्यूस जो है वो बच्चों को किया जा रहा है स्कूल के करिकुलम में।
0: जी दोस्तों, तो हर कोई जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास हमारा खुद का होना चाहिए कि हम कितना इंटरेस्टेड हैं अपनी जो संस्कृति को लेकर, परंपराओं को लेकर, और जो ये एक तरह से इसे संरक्षित करके रखना हमारी एक जिम्मेदारी है, तो ज़रूर इसमें हमें अपना योगदान देना चाहिए। तो आज के ये बहुत ही खास बातचीत हथकरघा दिवस पे आप सभी ने सुनी, तो मैम जाते जाते आप हमारे युवाओं को, बच्चों को, दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: ये जो हैंडलूम के उत्पाद हैं, हथकरघा उत्पाद हैं, ये हमारी जो है वो हेरिटेज हैं, हमारी लेगेसी हैं, हमारी पहचान है। अगर हम इनका प्रयोग करना बंद कर देंगे तो हमारी पहचान विलुप्त हो जाएगी। तो हमारे कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इन उत्पादों का प्रयोग भी करें, इनको बढ़ावा भी दें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। हमें थोड़ा ऐसे लगता तो है महंगे हैं, आप बहुत महंगा नहीं खरीदिए, चाहे छोटा खरीदिए, चाहे गिफ्टिंग के लिए जब हम किसी के लिए कुछ खरीदते हैं तो कुछ अपना हैंडलूम का बना खरीदिए। आप कहीं भी बाहर जाते हैं, भारत के किसी भी कोने में जाएं, तो वहाँ पता कीजिए कि क्या पारंपरिक उत्पाद हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हर जगह एक जैसे मिलते हैं, तो उन चीज़ों के खरीदने की बजाय आप ऐसे चीज़ों को खरीदने का प्रयास कीजिए जो वहीं के हैं, वहीं लोगों ने बनाए हैं, लोगों का जो कल्चर है वो भी डिपिक्ट हो रहा है, उनकी जो संस्कृति है वो दिखाई दे रही है। और जब वो पीस हम लेकर आते हैं तो उन लोगों को एक बहुत बड़ा बढ़ावा होता है, और जब हम अपने रीजन में जाकर उस चीज़ को पहनते हैं या यूज़ करते हैं या अपने घर में डिस्प्ले करते हैं तो और भी लोगों में जागरूकता होती है कि अच्छा इस तरह की चीज़ मिलती है तो हम भी जाएंगे, हम खरीदेंगे। तो इस तरह से हम जो है सामूहिक प्रयास से इस लेगेसी को आगे लेकर जा सकते हैं, ताकि इतनी अच्छी जो हमारी संस्कृति है, धरोहर है, ये कला है जो कि हर किसी के पास नहीं है, तो इसको बचाना संभालना हमारी ही जिम्मेदारी है। और अगर हम मिल के इसमें आगे का प्रयास करेंगे तो हम ज़रूर इस धरोहर को बचा के और संजो के रख पाएंगे।
0: जी दोस्तों, तो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मैसेज मैम ने आप सभी तक पहुंचाया है, और बहुत ही खास ये बातचीत जो है आप सभी के साथ साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका
1: थैंक यू
0: हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी दोस्तों, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस बहुत ही खास बातचीत को बहुत ही प्यार से एंजॉय किया। तो अब समय है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात एक और खास बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप बहुत ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से कार्यक्रम एंजॉय कर रहे थे जी दोस्तों। तो अब इसी के साथ आप सभी से एक आग्रह है और एक अपील भी है कि अभी कुछ मेंटेनेंस के चलते जो है रेडियो कुछ समय के लिए आज के दिन के लिए आप सभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो फिलहाल के लिए आप सभी सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे ही सेवाएं कंटिन्यू होती हैं तो आप फिर से जुड़ जाइए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना। इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेके माटी दी महक। श्रोताओं कर दे कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कन्ने। तोहां सारे

0: अध्ययन उद्योग संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी। राज्यसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित किया। इस बीच संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात

की। इनमें नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के पद से इस्तीफा देने मात्र से कथित बेहिसाब संपत्ति के मामले में उसकी आपराधिक जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की।

0: प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे
1: राजेंद्र जानकर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों, क्योंकि एक ठोकरे ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का, अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा।
7: ऐसे ही ये फेक ऑफिसर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देके आपसे पैसे मांगते हैं। सिर्फ सेविंग्स नहीं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट से पैसे निकलवाते हैं। रिमेम्बर, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। पुलिस किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको प्रेशर में पैसे निकालने के लिए बोले तो पहले आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली और बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। स्टे सेफ, स्टे विजिल।
8: बेबी, ये पर्स है 30,000 रुपीज का, मुझे बड़ा पसंद है, ले दो ना प्लीज।
9: ओह नो,
10: 30,000 का?
8: हाँ
10: ले।
8: सच्ची?
10: लेकिन मेरे दो काम करने पड़ेंगे।
8: हाँ हाँ बताओ, कर दूंगी बिल्कुल।
10: पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, वो भरना पड़ेगा, और दूसरा घर की EMI आ गई है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी।
8: पागल हो क्या, यहाँ मेरे पास जेब में 10 रुपए नहीं है, आप क्या EMI भर दो और इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो।
10: तो फिर ये बैग लेके करना क्या है तुम्हें?

नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और आऊँ सचिन कपूर तुस होगी बिल्कुल लाइव हाजिर हाँ तुंदे वीडियो सेट में। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रा सभी श्रोतागण रा। तो श्रोतों बहुत सारी जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम रे माध्यम से तू सभी तक पूछते हैं जिनकी तो है सब बखूबी जानते हैं और बिल्कुल थोड़ा करे कि असो जिनकी तो है सब जानू कर देन कि इन दे स्टूडियो रखे सो काम चल रहा है, नो ए टूल्स कैन सो इंस्टॉल बुच्चू कर देन, नो ए माइक ए टू जेड चीज़ नो ही बुच्चू कर दी हैं। तो है सब श्रोता सो की ज़रूर बने सकते हैं अपना बिल्कुल बने सकते हैं और इस नंबर मंच की सो कॉल कर सकते हैं श्रोता 7018879 पर नंबर अक मौके फिर आऊँ शेयर करना हाँ 7018879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो नहीं सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। हे गल्ला रा खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो रेडियो मंच साझा करने लायक जरूर भुआ, रेडियो मंच दसने लायक जरूर भुआ श्रोतों। चलिए जी बहुत सारी जानकारी हिन हसु बले जो हसु तुसु तक रखे सो पहुँचानी हिन और सोगे सोगे जानकारी सोगे श्रोतों और भी गल्ला बात हिन जो इन श्रोता हसु की जुड़ दें सो भी तुसु तक जरूर हसु तैयारी आवाज़ भी पहुँचानी है। बहरहाल है आगाज कर लें देन कार्यक्रम रहा और आगाज तो बात किया फिर बहुत सारी गल्ला तुस तक रहे तसले श्रोतों ता कॉल में दसी तक एक कस नंबर मंच तो है कर ही सकते हैं और जुड़ी सकते हैं। चलिए फिलहाल तो कुछ एक चीज़ा कुछ एक जानकारी के अनसो है तुसोगी शेयर दिन दिन करी श्रोतों। श्रोतों जी के बरसात रहा मौसम मानसून किया सो अपनी बिल्कुल चरम सीमा पर है और इस वक्त की श्रोतों सो बहुत ज़रूरी है कि यह नदी नाले किनारी के न सोना गान इन गल्ला का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नदी नाले किनारी के न सोना गान लैंडस्लाइड के वो चुकर दिया तस किनारी ना गान श्रोतों और इन जगह किनारी के न सो ना गान है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है सो सभी वास्ते। बहरहाल और भी बहुत सारी जानकारी हैं ज़रूर तो सुधक है जी ये जानकारी की है सो ज़रूर पहुँचल है लेकिन आइए आगाज़ कर लेते हैं ना पहले कार्यक्रम आगाज़ किए श्रोतों सो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है ना आगाज़ और अंजाम बढ़िया बुने चिंदा। फिलहाल हुनंदन तू सभी हो प्यारे दे गीत है ज़रूर सुन लें तुंदे वीडियो सटना पर तो इस सब होगी जुड़ी सकते हैं 7018879 अकबर। चलिए जी हूँ दिन तू सभी प्यारे देगी तुंदे वीडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच बने रहा जुड़े रहा

अपना पसंदीदा गीत के सो होनी सकते न 7088887098 पर नंबर अक मुके फिर आऊँ तू हो गए शेयर करी नो साझा करी नो हाँ 7088887098 पर तो सब श्रोता कॉल करी सकते न और अपना पसंदीदा गीत के सो होनी सकते न अपने क्षेत्र की जानकारी वो गीत साझा करी सकते हैं। श्रोताओं याद है तुझको कि अगर तो है गरुण पुराण रे सो कथा हो रही बुआ या फिर गरुण पुराण में के लिख रहा कि इंदे कर्म के अंसो असो के गंदन है ना और बल्दर की तड़ी आख नदी के सो असो पार करने पेंदे आ और अगर सो नदी बड़ा टफ बुंदे बल्दे पार करने हो रही कथा तो कर्मापुर की असो सब खेल है श्रोताओं। अगर तुंदे कर्म खरे हैं तो सब कुछ खरा और अगर तुंदे कर्म खरे नहीं छोतों तो कुछ भी खरा नहीं। बरहाल है फेसबुक रे माध्यम तो भी आजकल के सो लाइव इंदन था बिल्कुल है जुड़ी चुक रहे फेसबुक रे माध्यम तो भी बिल्कुल लाइव तो छोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही ना और है बिल्कुल लाइव कार्यक्रम तुंदे वीडियो सेट में चल रहा है छोतों बहुत सारी जानकारी हिन जो जानकारी है तुझको के शेयर करनी। बहरहाल तू पता कि सबसे पहले तो धर्मशाला रा जो मौसम है सो मौसम है तू होगी शेयर कर देन कि धर्मशाला भी समय की है सो मौसम कदे कदे हालांकि आऊँ दसना चाहता छोतों अज पूरा दड़ा की है सो बरखा लगी रही है है ना हल्की हल्की बरखा की सो लग रही है और इस समय रे गल करूँ तो श्रोताओं 18 डिग्री सेल्सियस रे आसपास की सो मौसम दसु कर दे हिन और न मेरी गल करिए जतियो अंग्रेजी में की सो ह्यूमिडिटी बल दे हिन 76% रे आसपास की श्रोताओं सो ह्यूमिडिटी हा है ना जी और इंडोर ह्यूमिडिटी री गल करिए सो भी लगभग सेम या शतो विजिबिलिटी री गल करूँ तो 8 किलोमीटर तक विजिबिलिटी भी उपलब्ध था। तो ये मौसम री जानकारी शतो जो है तुसु तक पहुँचाई है और अन्य और भी बहुत सारी जानकारी हिन जो है तुसु तक पहुँचाना लगे। बहरहाल तो ये कॉल जरूर कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते श्रोताओं 7088107098 पर नंबर आक मौके फिर हूँ शेयर कर लूँ हाँ 7088107098 पर। तो श्रोतों रोजाना की आसो सड़क हादसे हिमाचल प्रदेश में बढ़ते चलो कर देन जो आक चिंता रहा विषय की आसो आसो सभी वास्ते हा तो है गहन विचार कर देन अगर इति पर तो वाकई में ही चिंता रहा विषय है श्रोतों और तो तुसु मनना ने है कि हिमाचल में हर घर तो आक चिराग की आसो इस एक्सीडेंट रे थ्रू मारे गच्छू करता है इस ओवर स्पीड रे थ्रू किया सो मारे गच्छू करता है मरे गच्छू करता है यदि भाई बड़ी सूझबूझ किया सो चेंदे बुंदे कई मनु लगता कि शायद गड्डी मोटर गया सो ये चली पंदी है सीख गए तह चलाए लेंदे बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस किया सो चेंदे बुंदे है शो तो गड्डी मोटर चलन दे वक्त है ना तुंदी सिक्स सेंस किया सो प्रेजेंट रहना पैंती वेखना पैंती है सिक्स सेंस बड़ी जरूरी चाहती है तुंदी कि कड़ी कि ओवरटेक करना कड़ी ब्रेक लाने कड़ी कि करे स्पीड चलना कड़ी आस्ते चलना कड़ी ब्रेक लगनी ये सब चीज़ अगेन सो बैलेंस करी करी कि सो चलने पैंती है ताई एक्सीडेंट रहे जो कारण बड़ू कर दें छो तो हिमाचल में इतना ही बड़ू कर देना अभी भी हाल ही में आऊँ तुसु दसना चाहता कि सिद्धबाड़ी में भी जो एक्सीडेंट बचूरत हो आई थिंक कोई 10 दिन न बुए बुने 10-15 दिन मोस्टली बुए बुने था तड़ी भी किया सो गलती कस की हो रही थी कि तीन एकदम टर्न करो और पूछूँ बाइक काला किया सो तस्वीर स्पीड कंट्रोल ना बोए और ये हादसा बच गो कि जानी कैन सो चली गई है ना और ऐसे ही तो सिद्धबाड़ी री गल ऐसे न जाने हिमाचल में कितनी सिद्धबाड़ी बुनी जड़ी इस प्रकार रह के न सो एक्सीडेंट रोजाना भुचू कर दें छोतों जो आकर चिंता रह विषय किया सो असी असू सभी वास्ते है। बहरहाल कार्यक्रम सचिन कपूर सो के हुनु कर दें इंदी अपनी गप्पा और अय्या जी कार्यक्रम जो हगो बड़न और हुनन दिन तू सभी श्रोताओ ये गीत बने रहा सचिन कपूर सो के और रेडियो गुंजन री इसी गूंज सोगे

0: शोध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम आर जे सचिन कपूर सो की होने कर देन बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट में तो बहुत बहुत स्वागत है मुके फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा तो आइए श्रोत कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो है बढ़न दिन और हाँ बिल्कुल आज ये बोले सकते हैं कि कार्यक्रम में जो है जिंदगी री गल लो रही है क्योंकि जिंदगी सभी री बड़ी अहम है शो तो और गल के लो रहे है शो तो ये भी तुम तो कहे जरूर दस दहीन क्या आज कनाइंदा टॉपिक है शो तो जी बिल्कुल कि हिमाचल प्रदेश में जो सड़क एक्सीडेंट बड़ो कर दे इन शोतों क्या कारण है कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन के शोतों तो है जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में औसतन रोजाना के 500 से 600 सड़क हादसे भुंदेन हाँ बिल्कुल ये इंदे हिमाचल प्रदेश ये इस सड़क हादसे रे अक डाटा तुसो के शेयर करो करता कि रोजाना के सो इतने सड़क हादसे भुंदे इन शोतों थोड़ा करे है सब शौक नहीं है गल्ला तो बुना भी चीन दर्शो तो कजो कि कसकी रे घर है चिराग जहने बुझ गन दर्शो तो वाकई में घर वाले के ने सो थोड़े ने बहुत ज़्यादा डिप्रेस पुछ गन दे हैं डिप्रेशन में कि सो चली दे आऊँ दसना चाहता शो तो कि हिमाचल प्रदेश में औसतन रोजाना 500 से 600 सड़क हादसे भुंदे इन शो तो जिती में से किया सो हर दिन लगभग 2 से 3 मण उखिया सो अपनी जान गवाई दिन देन हालांकि सरकारी प्रयास और हिमाचल प्रदेश रोड सेफ्टी अभियान रे कारण किया सो कुल हादसे री संख्या साल दर साल किया सो घट बो चुकर दे है कमी चुकर दे नो डाउट पर फिर भी पहाड़ी वस्ता हा शो तो और पहाड़ी वस्ते पर ये आंकड़ा बेहद चिंताजनक है इन द श्रोता सो के कनेक्ट हुए इन बिल्कुल कनेक्ट करते हैं इन शोतों तो सब बंडो ने समय रेडियो गुंजन री गूंज होगी और आऊँ तुंदा अपना नाचीज सचिन कपूर है और कार्यक्रम जो होस्ट करूँ करता हा कार्यक्रम रना हिंदी अपनी गपाइन तैया हाँ इंदे श्रोता सूगे कनेक्टेड है नमस्ते जी हेलो नमस्कार जी
1: नमस्कार नमस्कार
0: जी नमस्कार जी नमस्कार
1: क्या हाल है सचिन जी
0: बहुत बढ़िया जी तो है बल्ले तुंदे के हाल ने
1: बिल्कुल स्वस्थ हूँ बिल्कुल
0: चलिए स्वस्थ
1: एब्सोल्युटली राइट है जी
0: बिल्कुल जी बिल्कुल स्वस्थ की सो ही रहना चाहिए है ना जी
1: जी जी तभी तो आपसे बता रहा हूँ
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
1: बोल के आपसे बोल के और खुश होता हूँ
0: खूबसूरत बुंदन की खुश बुंदन
1: आपसे मिलकर और भी खुश हो जाते हम
0: अच्छा अच्छा
1: प्लीज आप मूड को जाते हैं बिल्कुल
0: क्या बात है क्या बात है अच्छा जी कौन बल्लूंदे ना और कड़ी था बल्लूंदे जरा
1: जी मैं तुम्हारा छोटा एक श्रोता है जी अपना मतलब धर्मशाला जवान कर दे चेलियां ये अनिल
0: अच्छा जी अनिल जी रोड सेफ्टी पर आ जाए है गल करू कर देन और
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ले आऊं आंकड़े ब्याह करे करो ही कर दे तू बिल्कुल कॉल के सो चले आए
1: मुद्दा रखे ना रोड सेफ्टी वाला
0: जी
1: काम से चल इधर कुछ बोल गया ये पहले घर के अभी सड़क पे एक नबी वो है ना से वो स्पीड बढ़ पड़ी जा रही तो सच कर ले ना बिल्कुल रोड साइड पर मैं रहना बिल्कुल और रोड साइड पर दिन पर दिख रहा ना कि ये यंग ब्रदर है ना तेरे जो कोई भी कंट्रोल नहीं है
0: जी
1: और मेरे सामने एक परसों भी दो लड़के आपस में कुलाई करते से बात देखने लगे बल्कि आज सूर्य मॉर्निंग एक बंदा इन्फ्रंट पे जा कर था दो बंदे बाइक पर एक पर जा कर सब कुछ कुलाई करी है ना
0: जी
1: तो इधर जरा मैं देखा भी सबसे बड़ा रीजन पता क्या है
0: जी
1: तो हमें रीजन था रीजन रीजन इसका कारण है कि एक तो स्पीड ब्रेकर नहीं है कुछ भी लगभग इसी रीजन जब लोग देखा इसका पोस्ट एरिया है ना
0: जी
1: है ना पोस्ट एरिया का सारा एक स्मार्ट सिटी वाला एरिया है स्पीड ब्रेकर ना आए, बड़े कटे बड़े बहुत ही कम,
0: स्पीड
1: और जो
0: ब्रेकर।
1: थे स्पीड ब्रेकर और जो थे ना पहले सभी
0: जी
1: उखाड़ी थे लोग का, जो सत्य भाई एक आर्टिफिशियल दे चले अजकल निकल ना। था पहली गल रोड भी स्पीड ब्रेकर होते थे ना, बोलो भी गली गली से भी स्पीड ब्रेकर होते थे, ताकि लोग गलियों से भी मतलब तीसरी स्पीड ले जाया करते ना। आदमी जिंदगी सोचा नहीं करते स्पीड ब्रेकर पढ़ाई पढ़ाई दो, क्यों परमिशन लेने की जरूरत है? सोचने की गल भाई, अगर तुम हादसे कम करे ना तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर जितने मोड़ है ना सारे भाई की स्पीड ब्रेकर लगाई दो, अपने लोगों को अपने पर लोगों की फिर स्पीड से कंट्रोल हो जानी।
0: बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, जो
1: सबसे मस्त लिखे मैं इस चीज ऑब्जर्व कराया करना, नेशनल लेवल से कराया करना, कल मेरे जहन से ये चीज आया कर दी कि इसका मेन रीजन भी स्पीड ब्रेकर। अच्छा ना एटलीस्ट मैं देखा गलियां ना छोटी गलियां
0: नठने
1: वाली गल है ना, हादसे हो रहे पहले पहले अपने पर संभाल लो सरकार, जो सरकार चाहिए इस वास्ते अवेयर हो।
0: बिल्कुल,
1: हर जगह मैं कि कोशिश की थी ना
0: जी,
1: तो मुझे जवाब ये मिला कि बोला जी इस वक्त परमिशन लेना पड़ेगी। अरे परमिशन किससे के लिए परमिशन?
0: चलिए अनिल जी, तो है हमेशा सुझाव दिन दिन और इस कार्यक्रम रे माध्यम तो इस प्लेटफॉर्म रे माध्यम तो बहुत सारी जनता के ऐसो तुंदे सुझाव जो कि ऐसो बड़े गहनता होगी कि ऐसो हुण दे है ना जी। और तो है हमेशा तो है आज जो सुझाव दिता लेके कार्यक्रम मन जाए है अपना टॉपिक की भी चंद लाइन ही की है चंद आंकड़े के ना सो भी यहाँ कह रहे थे तो इधर सीता कि स्पीड ब्रेकर तो है मेन मुद्दा रखो कि स्पीड ब्रेकर बोना के सो बड़े अहम ने बड़े जरूरी ना
1: अहम जी हम बिल्कुल। और कुछ बच्चे मैं देखा भी नशा करी बोले कर दे
0: जी।
1: और गली के भी रोड पर भी ना कई बार परे पुलिस वाले खड़े होंगे रोड सिटी वाले एरिया से ना, तो लोग बोले पुलिस वाले खड़े हैं बोले इनके पास जाओ बोले है ना, बीते जो स्मेल कर देना बीते ना ओलाय दे ना ना कलाय होगा सभी लोग बैठ दिखते पुलिस वाले तो साइड में बाकी छोड़ जाओ फिर वही साहब फिर से चलान दे नहीं डरते कुछ नहीं
0: जी। बिल्कुल चलिए अनिल जी, तो सुझाव देता
1: इसे तक जैसा क्या बनेगा। अच्छा एक तो नहीं छोड़ दी गल ओवर है
0: जी जी जी
1: सचिन जी, मैं हार्डली कुछ दिन पहले एक ऑटो सिलेक्शन गया
0: जी,
1: मेरी चंडीगढ़ हरियाणा साइड गया ना
0: जी,
1: तो उतो मैं चीज ऑब्जर्व की थी और कुछ लोगों ने पूछा भी, मैं बोला भी ये लोग स्प्रे कर दिया स्प्रे करे करे करा रहे
0: जी,
1: मतलब कैसे स्प्रे करे कर दे, तो तेना लोग मुझे ये बोला कि यहाँ पर की जो म्युनिसिपल है ना कमेटी कारपोरेशन जो है चंडीगढ़ या हरियाणा बैर की जो भी है यहाँ पर म्युनिसिपल कारपोरेशन और जो पंचायत के बीच पर भी होता होता है कार्य, मैं बोला क्या कार्य, बोले यहाँ पर DDT छिड़का भी होता है और मच्छरों के लिए भी छिड़काव होता है, तो क्यों ना हमारे इस एरिए में भी है धर्मशाला के एरिए में स्मार्ट सिटी के एरिए में, क्योंकि मुझे याद है कि आज से कुछ वर्ष पहले यहाँ पर पता क्या होता था DDT छिड़काव भी होता था है ना, और एटलीस्ट मच्छरों का छिड़काव भी होना चाहिए मैं इसमें जरूरी, पर सरकारों को बस बोलते पैसा ही नहीं है ये सबसे जरूरी चीज है ना,
0: बड़ी कॉमन चीज है और बड़ी कॉमन चीज है जो तो
1: दिखा होगी। और मैं जरा देखिए जो विषय उठाना ना कोई भी नजायज नहीं होगा वो
0: बिल्कुल
1: बोले होगी, और ताकि मैं देखा जी अगर अदर स्टेट से लोग जागरूक है फिर जी कारपोरेशन से जागरूक है ना, तो सारे मतलब क्या नहीं होगा है ना, फिर हाँ बोलते थे डेंगू होगा, अरे लोग औरतें थे लोग बच्चे लगे बोले यहाँ पर किसी भी गली में घूम लो कोई मच्छर नहीं मिलेगा बोले
0: बिल्कुल,
1: और यहाँ पर देखो किसी भी गली में खड़े हो जाओ आपको मच्छर खा लेगा बड़ी बुरी तरह से
0: जी बिल्कुल,
1: आप शोर से डालते तो निकल नहीं सकते गली में इतना मच्छर है हर जगह, एक तो पोल्यूशन है
0: बहुत ज्यादा। अनिल जी तुंदे गल के सोहे सब भी बड़े ध्यान होगे होने भी है, और बोल सकते कि कई मनु है होने है ना जी, और थोड़ा करिए हम जल्दबाजी में था भैया कि इंडा स्टूडियो रे काम चल रहा था, थोड़ा कर लाइव मुझे लगता कि अपना समाप्त करना पड़ना है ना जी।
1: जी
0: अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विषय जो इस टॉपिक जो इन द टॉपिक है कंप्लीट ना हुआ इसी वह ज़रूर कंप्लीट कर ले देते हैं ना जी। धन्यवाद। तो श्रोतों भैया फिलहाल क्या आदेश न उपरत हो सो सो है जाने लेन देन तीन तकरे तो है कि प्यारे दे गीत किए सो एंजॉय करे और वापस मूल देन चंद गीता तो बाद चंद लिरिक्स तो बाद चंद लम्हे तो बाद।

दर्शकों आज कि मैं तुस बोलू थू क्या आदेश होना बहन क्या आदेश इन फिलहाल तो आदेश न कि इन सिस्टम के सो फिर थो वी स्टार्ट लगा बुना और सारी चीज़ा फिलहाल इजाजत ले लेनो तुस थो सचिन कपूर पतना कने ने आवाज़ के सो इन टेक्निकल जो इंजीनियर छूरे दिल्ली थो इन कटेनी मेरी आवाज़ ताऊ सचिन कपूर लेनो तुस थो इजाजत दोते मोलते हैं शोतों हंसते रहे मुस्कुरते रहे माँ बाप री सेवा करते रहे और कसीरा बुरा के सो मत करा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर घर

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पत्र

0: क्योंकि ये ठोकरें ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: ए, क्या गेम चल रही है? हम मजा कर रहे हैं इधर।
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
4: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स? सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
6: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है,
7: सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, चिंता मत कर।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर घर

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना। इसीलिए

मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों और सपनों को अपने नजरों से हटाएगी। गिरकर भी तुम्हें उठना है दोस्तों।

0: क्योंकि ये ठोकरें ही तो तुम्हें चलना सिखाएंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। उन तजुर्बे के लिए उन शर्तों का भी सामना जरूर करना पड़ता है।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या गेम चल रही है, हम मजा कर रहे हैं क्या इधर?
5: 24 घंटे से यहाँ बैठा हूँ सर, मैं कितनी बार बताऊँ मैंने कुछ नहीं किया है सर।
6: ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में?
5: ड्रग्स सर, सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो।
4: ये देख, डिजिटल अरेस्ट वारंट है तेरे नाम का, अगर तूने कॉपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे।
7: जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है,
8: सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में।
4: और तू चिंता मत कर, चिंता मत कर।